वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा सॉन्ग दरिया वल्ले रंगले सरदार वालों। तो क्यों ना अज माहौल में थोड़ा जहा होर भंगड़े वाला बनाया जाए। तो एक होर सॉन्ग जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, बाय एमी विर्क, अज सुनते हैं कंठे वाला।

रेडियो उड़ान ते अपने बिजनेस नु करो प्रमोट। आज ही अपनी एडवरटाइजमेंट बुक करने लिए कॉल करो प्रभ संधु होरा नु 4378700001 4378700001।

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लघु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton।

0: ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਈਏ, ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
0: ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੀ। 647-993-1484 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
0: ਹਾਂਜੀ ਖਲੀਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ
2: ਜੀ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਸੇ ਹੈਂ?
0: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ।
2: आपकी जो टॉपिक है, देखिए इसमें दो चीजों का पहलू है, दो चीजों का कॉमन है। वो ये कि एक तो ख्वाहिशात होती है इंसान की कंपटीशन के लिए।
0: जी जी जी।
2: तो ये एक रेस है, एक किस्म की रेस होती है। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, मेरे टीचर बोला करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था बचपने में, मगर समझ में आती नहीं थी बात। मगर बड़े तो ज्ञानी बड़ी बात करते ना भाई, ठीक है ना, बड़ा निवाला खाते लोग। तो वो ये बोलते थे कि बेटा दिस इज ए रैट रेस
0: जी,
2: इवन इफ यू विन द रेस यू आर ए रैट।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: यानी आप चूहों की दौड़ में बड़ा बन गए, बोले यार जीत गया मैं रेस।
0: रहना वही है।
2: हाँ, मतलब किससे जीता तू यार? चूहों से। तो शेर थोड़ी बन गया यार तू।
0: सही बात है।
2: तो चूहा ही है। तो ये जो बड़ी लॉजिकल बड़े लोग बोलते हैं, अच्छा पहले लोग ये थे पंजाब में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कि कोई भी चीज हो, जो सैलरी होती थी वगैरह, उसमें बड़े सुकून से आराम से रहते थे, क्योंकि उनमें एक बात थी यार, जो मिल रहा ना शुक्र अदा करो बोलते।
0: बिल्कुल।
2: अब वो चीज नहीं रही पहले जैसी। मुझे याद है कभी वालिद साहब पुरानी कुछ चीजें लाते थे, उसको बोलते थे कारनामा। कारनामा यानी पुलिस डिपार्टमेंट में, पापा पुलिस में थे ना, तो लाते थे हेड कांस्टेबल्स वगैरह के, एसीपी थे। तो मैं फाइलें देखता था, मैं दंग हो जाता था पढ़ के, हालांकि छोटा था। मैं बोलता था अब्बा इसपे तो लिखा हुआ है ₹7 बेसिक तनख्वाह।
0: जी।
2: तो बोले हाँ बेटा। बोले ये क्या करता था ₹7 में? नहीं बेटा, ₹7 बेसिक थी, डीएचए सीआरए अलाउंसेस मिला के 125 मिलते थे। मैं बोला फिर वो 125 में क्या? 125 में पुलिस का क्वार्टर है, उसको ने फ्री में रह रहा, और पानी उनी की भी फिक्र नहीं, पानी तो नल फ्री आता था, नल का था। बोलने का मतलब मेरा है कि वो लोग कैसे थे, वो रो अमन और आराम से, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन हर एक की आधी हो जाती। लेकिन उनमें ये नहीं था यार वो भी ले लूं, यार मैं ये भी ले लूं। बोलते थे जो नसीब में है वो मिलेगा। तो इसके ऊपर बड़ी प्यारी चीज है, वो ये है कि ये जो देखा देखी, आप बोले ना कि दो ईंट आप रखा, तो दूसरा ईंट कोई घर बना रहा तो उससे 1 इंच ऊपर रखूंगा, ठीक है ना?
0: बिल्कुल।
2: तो वो बात सुनते हुए मुझे आपकी याद आया, बड़े उस्ताद हमारे बड़े जबरदस्त थे, उर्दू के शायर, उनका नाम था पांडुरंगा रेड्डी साहब
0: जी।
2: ये ब्राह्मण थे, हिंदू, मुझे उर्दू उनसे सीखा, मैं हिंदू थे वो
0: जी जी।
2: तो वो मुझे बोलते थे कि देखो बेटा, शर्फ ये सिर्फ मेरे दोस्तों को हासिल है, शर्फ ये सिर्फ मेरे दोस्तों को हासिल है, मुझे जलील कोई दूसरा नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
2: ये जो दूसरी
0: कंपटीशन की जो भावना ना, दूसरे को दिखाने की है, दूसरे के साथ रेस लगा के भी, उसने ये किया मैंने ये करना, उसने ये किया मैंने ये करना, ये है ना, ये बहुत है। बाकी जितना आपको चाहिए उतना तो आपको चाहिए, उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी बहुत जरूरी है।
2: और चलते हुए आखिरी में बोल दूं कि एक बुशर बोल के थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे
0: जी,
2: बिल्कुल दिलीप कुमार। आप अगर 8 फीट दूर से उसको देखेंगे तो बोलेंगे ये यूसुफ कहाँ आ रहा, दिलीप कुमार है ये। बाल, चाल, चेहरा, रंग वगैरह सब कुछ। तो एक दिन वो बैठे हुए थे, कोई बोला यार मेरे में दिलीप कुमार में क्या फर्क है, तुझी दसो। तो उन्हें बोला यार बुरा लग जाएगा, तू जाने देना। नहीं यार तू बोल तो सही, बोल तो सही, जिद करा। तो बोले देख भाई, तेरे में दिलीप में बहुत बड़ा फर्क है।
0: जी जी जी।
2: दिलीप जो है एक्टिंग का शहंशाह है, और तू चलता ना तो बेवकूफी झलकती। ये देखिए आप, उसको बंदा परेशान हो गया और एकदम आसूदा हो गया, तो उस वक्त मुझे याद आया कि खरीदे जा रहे हैं झूठे आंसू।
0: जी जी जी जी जी,
2: खरीदे जा रहे हैं झूठे आंसू, गमों की भी तिजारत हो रही है।
0: क्या बात,
2: बड़े लोग थे, बता रहा हूँ, बड़ी गहरी बातें बोले। इससे क्या होता, प्रेरणा मिलती। आप कोई भी चीज में हो, मैं सुखी हूँ यार, मैं सुकून में हूँ बोलना। आप चाहेंगे एक दिन में मैं दारा सिंह बन जाऊँ, नहीं आप बोलते मैं एक्सरसाइज कर, कल मैं जिम ज्वाइन हो गया खलील जी, कल मैं दारा सिंह बन जाऊंगा। आप

0: अपने आप को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं। दारा सिंह कोई 25-30 साल एक्सरसाइज करके जाके वो हुआ, फिर वैसी हाइट कहाँ से लाएंगे? चलो सीना भी बना लेंगे, आप आर्म्स भी बना लेंगे, खत को क्या करेंगे? खींचेंगे आप अपने खत को ऊपर दारा सिंह की हाइट लाने? बताइए आप।
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बढ़िया फीडबैक आपने दी, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू वेरी मच।
2: आपका भी शुक्रिया जनाब, सारों को सत श्री अकाल।
1: थैंक यू। सो दोस्तों जुड़ियो तुसी रेडियो प्रोग्राम सब रंग दे नाल, साडा तुहाडा साथ रहेगा 11 बजे तक। ते एक छोटा जिहा मैसेज तुहाडे नाल मैं शेयर करदा, फिर आपां गलबात नूं चालू रखांगे। अगे गलबात आपां पैसे दे बारे हो रही सी कि पैसा आदमी दी जिहड़ी हिरस जदों बण जाए ना, जदों लालसा बण जाए, ओह नुकसानदायक है। जिन्नी क जरूरत है उन्ना क साडी जरूरत है, उहनूं फुलफिल करना साडी ड्यूटी बन जांदी, साडा फर्ज बन जांदा। पर की असी जदों साडियां जरूरतां पूरियां हो जांदियां उत्थे जाके अपने आप नूं ब्रेक लगा लैंदे आ कि भाई इन्ना क साडे हुण साधन बन गए, इन्ना क पैसा असी कमा लैंदे जिहदे नाल साडा परिवार वधिया चल सकदा है और असी अपने बच्चियां दे फ्यूचर वास्ते वी इन्ना क सेव कर लांगे। इत्थे असी रोक लैंदे आ आपां नूं, जे किसे नूं किते अगे मौका मिले ते की असी अपने आप नूं रोक सकदे आ? सो इदां दीआं गल्लां बातां चल रहीआं, तुसीं अपना अपना एक्सपीरियंस मेरे नाल शेयर कर सकदे हो 647-360-5553 ते। सो साडे रेडियो प्रोग्राम दे मेन प्राउड स्पॉन्सर ने जी ब्रम्पटन कैश एंड कैरी। ब्रम्पटन कैश एंड कैरी पूरे कैनेडा दे विच 9 वखरियां वखरियां लोकेशनस दे उपर अपनियां सेवावां दे रहे ने। तुसीं लैणा होए घर दे विच वरत्या जाण वाला कोई भी समान, चाहे वह किचन की ग्रोसरी होए, किचन का कोई बर्तन होए, घर दे विच वरत्या जाण वाला कोई औजार होए, कोई कई चाहिए है, कोई दात्री चाहिए, कोई आरी चाहिए है, जो छोटे मोटे औजार घर रिपेयर वास्ते या बैकयार्ड दे विच कोई फुल पौधे लगाने वास्ते चाहिए होने ने, तुहानू ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो मिल सकते हैं। घर दे विच कोई विआह शादी या कोई फंक्शन है, तुसी पंजाबी थीम डिवेलप करना चाहते हो तो पंजाबी सभ्याचार दे नाल रिलेटड कोई भी चीज तुहानू चाहिए होए, कोई जागो दे नाल संबंधित, कोई हल्दी दे नाल संबंधित, किसी होर सैरेमनी दे नाल संबंधित कोई भी चीज तुहानू चाहिए होए, ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो मिल सकती है। गुरु साहबान की कोई फोटोग्राफ चाहिए होए, हिंदू धर्म संबंधित किसी

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की

0: सांझा विरसा मीडिया ले आए ने सेकंड एनुअल पिकनिक
1: संडे 23 अगस्त 11 AM टू 4 PM एट बल्ले बल्ले फार्म।
0: अनलिमिटेड फन मस्ती ते अपने आंदा होएगा साथ भंगड़ा गिद्दा गेम्स फूड स्टॉल्स मेहंदी सब कुछ रीजनेबल रेट्स ते।
1: तुसी अपनिया डिशेस भी बना के ले आ सकते हो। पूरा पिकनिक वाला माहौल पंजाब वाली वाइब्स। आ जाओ फिर 23 अगस्त दिन एतवार सवेरे 11 बजे एट बल्ले बल्ले फार्म 13219 ट्रिंकोजी रोड कैलेडन।
0: जानकारी जा स्पॉन्सरशिप ले हरजीत जंजुआ नु कॉल करो 647-835-5494।
2: ओए ट्रक काला लिया जदों देखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा।
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसिसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट, रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने, सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट, यहाँ पहुँचो 10970 ब्रैमली रोड। वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री, चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री, फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री, तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री, मैंगो लस्सी, सॉल्ट लस्सी, मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री। हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी। टिफिन सर्विस पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है। दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां, फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम। ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे 299 दे विच, अमृतसरी कुलचा विद चना 799 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा 399। सब्जी मार्केट ओपन 24/7।
3: ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਬਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਯੂਨਿਟੀ ਟੂਰ ਲੈ ਕੇ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ

0: Brampton. Major intersection Steels and Kennedy 9054512600. Hello bro, kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja reha. Soch reha si Tim Hortons te baith jaiye.
2: Oh yaar, ye to old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne full privacy mildi hai. Free wifi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग होगी।
2: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी हुए कॉल करो 9054512600 9054512600

ए टू जी किचन कैबिनेट, बई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करते हैं। लक्की भाजी दी बनिया किचन कैबिनेट देखे गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरिया किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते ए टू जी किचन कैबिनेट 416-720-7073 905-720-7073 कॉल।

0: मेडिकल इंश्योरेंस नंबर है जी 416-817-6500। दिस इज हरप्रीत सैनी, चार्टर लाइफ अंडर राइटर एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है। केक्स, पेस्ट्रीज, मठियाइयां, समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो। नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचने वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो।
2: घर तो आपां एड्डा वड्डा इन्ना सोना ले लिया, हुण अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं।
3: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना, फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, वॉशर एंड ड्रायर, एलईडी टीवी, सब इत्थों ही लवांगे। इन्हां तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनियां। कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, पेमेंट भी 6 महीने च करनी है, वो भी बिना किसी ब्याज दे। होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करनगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828-905-450
4: 9 to 8
5: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM 530.
6: Punjabi Versa!

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
2: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
1: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
2: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो। इंडिया किथे जाना?
1: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां?
2: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो तां साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने। ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
1: भरोसेमंद सर्विस ते सब तों वधिया रेट्स लई इक्को इक नाम कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
3: 32-55-80 98
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
3: काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हां कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असि लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मैंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मैंगी जी।
2: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मैंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets Nepal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne ja tusi visa services Nepal de vichu puri family vacation upper jaan di soch rahe ne jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upper call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over
5: Aaj khush to baat ho gaya
6: oh ta hona hi hai jadon tino video da no freezing no buffering ala 4K ultra high quality IPTV box hove ai lagda banda hi hai
5: aaj mere paas bill hai property hai bank balance hai bangla hai gaadi
6: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ?
7: ਚੱਲ ਕੇ ਰਹੇ ਆਪਰ
6: ਉਹ ਭਾਜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ।
8: ਡਾਨ ਕੋ ਪਕੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
6: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ, ਐਬਨੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਗੋਰ ਰੋਡ 905-204-13 ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਢਿੱਲੋਂਵੀਡੀਓ.com। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ?
9: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
10: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
9: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
11: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157, 416-570-0157।

0: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
1: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 9053580864
0: 9053580864 ढाबा ऑन द फॉल्स।
2: मित्रां दे जंक्शन ते
1: हो केड़े जंक्शन ते
3: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते
2: रात लगियां महफिलां रे
3: भाई महफिलां ते रोज ही लगदियां ने टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM टू 6 PM ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 6474940 40 40 6474294040 टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
4: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे पीओ च जंट पढ़ दा विमला विलेज ला विलेज विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नूं, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो।

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada day study visa, express entry, Canadian express entry, spousal file, parents PR, super visa, nanny, work permit, farmer, investor, ya self-employed di file. Gal ki, immigration di har problem da solution lain lai, community de jane pehchane ate tajrabe kar immigration consultant Gary Virk nu milo.
1: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha. CIC Immigration, hune hi call karo 416-456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तों ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
5: लखां दिलां दी धड़कन द सुपरस्टार एमी वेयर
6: मैं किथे बैठे आ करूं
5: Sound Live and Cellular Point present AmiWare live in Toronto. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo ready hojo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7